नवनज नाम वस्या कट अंतर शोड्या माया कालाहा हे। रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक त्या

अंत बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएंदा। काया विच तोटा काया विच लाहा,

है। आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आन दिन सदा

गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

जाती है। मान प्रतीत बनी प्रव तेरी, बिरस गई हूँ मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभु अपने जग में।

पाकखरां शराशरयत लेकम्मावहो त्रिकत तर्क खोज टोलावहो मारफत मन मारहो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द

गर्व अगन मह जिन्हें उबारिया रतत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

दरियाओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाए लोएन रत्ते लोएनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग में।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निधान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा सच

सादिन उस्तत निंदा दो विवर्जित तजहो मान अवधाना उस्तत निंदा दो विवर्जित तजहो मान अभिमाना लोहा कंचन सम कर जान है ते मूर्त भगवाना।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी बहरे करन अकल पई होची शब्द।

गुरमुख जाता से जग मह काहे आया। गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड भागी

बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया, प्रहलाद आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग कर

रहाउ। आन दिन भगत करहे दिन राती, दुविधा शब्द खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच बसिया मन सोई। मूर्ख दुविधा पढ़े मूल

68 सुरसरी। हम मूर्ख कौ हर कृपा करी, जन नानक तारियो तारण हरी। पैरों महला चौथा। सो कृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चले तुद नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जम जाली, रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

जिसका तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, तू जल थल महियल।

रहाओ। तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साध नाम

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पांथ गंगा जल गुर गोविंद नाम जो

ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर।

पंजवां निकट बुझ है सो बुरा क्यों करे बिख संचय नित डरता फिरे है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर

अंत अपूछे, राज हमारा सद ही निःचल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमारी

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

रहाओ। बहु पेख कर है मन शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पत खोए। सेवड़ भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा कर्म है आणिया, कर्म है बस अगम।

खेल तुझ महे समाहे, ज्यों पावे त्यों राख ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रव रहया गुरमिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध नव निद ए कर्म प्राप्त जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल प्रगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल

कुबजा उधरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दास्त पाए रे मन तू पी हर त्याए।

जवान गुरमिल ऐसे प्रभु त्याया भयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगै ना ताती बाया रहाओ।

पंजवा तांते करन पलाह करे महाबिकार मोह मद माताओ सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह धन ओए जन्मे।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग

तीर्थ अड़सठ मज्जननाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

हम हाट बिहाजे, जिस हर हर कृपा करै, हर जन को मिलिया सुख पाइए, सब दुर्मत मैल हरै, हर जन को हर भूख लगानी, जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै, हर का जन हर जल का मीना, हर बिसरत फूट मरै, जिन एह प्रीत लाई सो जाने, कह जाने जिस मन धरै,

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौजल जगत तरावै रहाउ। जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अगे।

तेरा मन बिगसै हौ तिन कह सद बल जांत ज्ञानी हर बोलह दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उत्तरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ है

कान हर बरस सगल जग छाया, पै कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

हर जप जपे हर जप जपे जप जा पौ जगदीश तुमरे जन राम जप है ते उत्तम तिन को हो कुम कुमे कुम कुम जीस तुमरे जन राम जप है ते उत्तम तिन को हो कुम कुमे कुम कुम जीस।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परम हो सुख जन

गुर का कहया ना चित तरै, कर आचार बहु संपौ संचय, जो किश करे सो नरक परे। एको शब्द एको

जिस मस्तक गुर धरिया हाथ कोट मध्य को बिरला दास। जल थल महियल तेखै भरपूर नानक उधरस तिस जन की धूर।

ਪਰੈ ਹੀ ਤੈ ਪਰੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ ਓਪਤ ਪਰਲਾ।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰਿਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ

मुन जन गाव है अचल छला। गावे गुण तोम अटल मंडल वे, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सु

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज योग जिन माण्यो।

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सम्हारन कौ फुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अघ पुंज त्रंग निवारण कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु।

सतगुर मिलाए होमे तजै विकार हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुर

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का।

मत विच रतन जवाहर माणक। जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जप कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुझ

लोक थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होवे सत्यार तब ले ऊपर के ताभार तरती होर परे होर तिस्ते पारत ले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सब ना लिखिया बुड़ी कलाम यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूट कीता पसाओ एको कवाओ सिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तू दुबा वैसाई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख बाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख पगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पखाहे असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ठाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे

तार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार पर ये हाथ पैर तन दे पानी तो तै उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लई है ओ तोए पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग पुन्नी पापी आखण ना है कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीरथ तप दया दत्तदान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन खिच कवन वार कवन से रुती महा कवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख कुरान सित वार न जोगी जाने रुत महा ना कोई जा करता सिर्फी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा अपनू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सहा सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो ना विसरे अंत न सिकती कहना अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

केतिया सुरती सेवक केते नानक अंतनांत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिते नाद विनोद कोड आनंद। धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिए बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए। तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सिदा की सुध।

आके रूप ना कथने जाए ना ओहे मरे ना ठागे जाए जिनके राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे के लो करें आनंद सच्चा मन सोए सत खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे।

नानक कथना करड़ा सार, जग पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगी आईया बुरे आईया, वाचे धर्म हदू।

गावन सुदनो पवन पानी बैसंतर दावे राजा तरम द्वारे। गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे।

का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परे बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुद आपे सिरज सब उपाय जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं

ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर लै पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जती पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनकू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम

नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन।

छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, हो कर राख वडाई तोए, रहाओ रिश्वे चस्या घड़िया पहरा, थिति वारी माओआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेश, राग तना श्री मैला पहला, गगन में साल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, रूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राए फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए, पवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी राव, सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो, सहस मूरत नन्ना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारं को, होए जाते तेरे नाए वासा, रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बहु परया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सिल डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, आउद कटे दिन सुरैनारे, मन गुरु मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पाव

आओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया।

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना। सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पू

चंद सूरज दोई गुफै न देखा, सुपने सौन न खाऊं, पी तेरी कीमत ना पवै, हौ केवड आखा नाओ। साचा निरंकार निज ताए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुस्सा कटिया।

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ, लेखै सा लवाइया, पढ़े के पुछन जाओ। बाबा माया रचना।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुखसुदी अगन क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कच नाम निवास जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का जित्ता देवन हार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सत जान जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंगे आईया सत परमल तनवास ता मुख हो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो विसारी है जाके जी प्राण तिस विण सब अपवित्र है जेता पैनन खान होर गल्ला।

कारमंदर खुशी नाम की नगर तेरी परवार। हुकम सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। बाबा होर

सच मिलै सच उपजै सच में साथ समाए सुरत होवै पत उगवै गुरु बचनी पौ खाए नानक सच्चा पा

आइए दर कर महल प्यार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर महल पछाणिए नदर करे मल तोए।

आओ। आप सुजान ना कुल्लई सच्चा वद किरसान, पहला तरती साध के सच नाम दे दान। नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान न जानई क्या किस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मन मुख अंध गुबार, आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर। चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु कणा पाना नाल कपूर। जे तन कंत न भावई ता सब अडंबर कूर, सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार। जब लग शब्द न पेजी है क्यों सो है गुरुद्वार। नानक

निरोध कर्म मिले सच पाए गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्जे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर अवगुण फिर लागू भय पूर्व जावे तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे।

निर्मल मैला ना पिया शब्द रते पत होए। ए मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

आगे देखो डौजले पाछे हरियो अंगूर, जिससे उपजे तिसते दिल से काट काट सच परपूर, आपे मेल मिला वही साचे महल हदूर। साए साए तुझ संभला कदे ना विसारे हो, जो जो साहिब मन वसे गुरमुख अमृत पियो, मन तन तेरा तू तई गर्भ निवार समय।

ओ बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जप जिये रे।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेव।

तीसरे रोग वड्डा मन माहे, क्यों दर्गे पत पाये जा हर नवसे मन माहे, गुर मिले सुख पाये अगन मरे गुण माहे, मन रे एनस हर गुण सार जिन खिन पल ना।

सौ प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रगाशया अमृत पड़या अघाए। नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगे जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल, मन सच कसवती।

दुर्मुख कूड़ न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवे, जे पावे दिशंतर देश, अंतर मैल ना

मिल सत संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलले सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पाव जल पचे पचाए। ए मानक जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस मिले, से पूरे पुरख सुजान, गुरु मिल पाव जल लंगी है, दरगे पत परवान। नानक ते

तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल अग्गे साओ सुजान है लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर ले।

मन के शान हर हृदय जमाए ले, क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया। पित सुतो सगल काल त्र माता, तेरे हो है ना अंक सखाया। रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे, इन तज आपने होए त्याई। जब तप संयम हो है जब राखे, कमल बिकसे मद आश्रम आई। बीस सप्ताह रो बासुरो संग रे, तीन खोड़ा नित काल सारे। दस अठार में अपरम्परो चीने, कह नानक इव एक तारे।

ऐब तन चुकड़ो इन मन मीड को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जाने बुझाई। आखन सुनना पौन की बानी इन मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक तियाया। ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखे

मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसार आप खाक जिन बंद रहाई तन सिरजनहारो मरना मुल्ला मरना पी कर तारो डरना रहाओ ता तू मुल्ला ता तू काजी जाने नाम खुदाई जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना परिये पाई सोई काजी जिन आप तजिया।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई।

आपे सच पावे तिस सच, अंधा कच्चा कच न कच रहाओ, जाके रुख बिरख आराओ, जे ही ताप ते हाथ नाओ, फूल पाओ फल लिखिया पाए,

अंतर हर रस रावरे चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रकाशिया लागा सहज त्यान मन निर्मल हर रावरे पाया दरगे मान सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार हौ मैं ममता मार के हर

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंडित जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध तभी न बुझई अंतर लोभ विकार। लक्ष चौरासी परम दे परम परम होए खुआर, पूरब लिखिया कमावना कोए न मेचन हार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए, शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए। पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें,

ओ वेला हथ न आवई अंत दया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर से लिवलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे हर

गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याए मल हो मैं कदे तोए रहा। मनमुख नाम न जाननी विन नावे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए। विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता, से विस्ता माहि समाए। तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए। हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्हें गुरुमुख नाम ते आया विच्चों आप गवाए। ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे वापार। हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार। पाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करें गुरमुख नाम ते आए रहा। हर पगत हर का

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे होए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उरवार ना पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है।

गुर प्रसादी मन वसे हों मैं दूर करे एहो मन तावत ता रहे जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुखर नाम ते आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चा।

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए, सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की सर

पाई रे, गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द है।

देख कुटुंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम न पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई। अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई। हर जियो दाता भगत वचल है कर कृपा मन वसाई। नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई। श्री राग महला तीजा। तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान। सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान। दर सेवन संत जन खड़े पाइन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसे। मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए। गुर शब्दी सालाही है रंगे सह सुवाए। सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए। जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए। चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए। आपे कार कराए सी अवर न करना जाए। मत तन रत्ता रंग स्यों होमे तज विकार। एनस हृदय रव रहे

अंत ना पाया जाए, कथनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैरच है, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे हो में क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, हो में विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुरु पाईए विच्चों आप गवाए, आम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए। श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार। सतगुरु क्या फिटकिया।

नानक दर सच्चै सच्यार है हो तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिय ता कित वेला भगत।

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पा।

अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुरु का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकायन हर राख्या उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हो मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार, रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लय मिलाए, अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए, विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

सच्ची वाणी हर पाए हर स्यो रह समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछू न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाए जिसनो कृपा करे र जाए। संसा एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे ले उन मिलाए आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर। मुंदे तू चल गुर कह पाए अंदिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार। हर वर पायन कर अपने गुर कह हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार। सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे जा।

तर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा तर्म विचार दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास मन जपे एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे तन सवारण हार। मन के विकार मन तजे मन चूके मोह अभिमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये मन मुख फिरे दीवान शब्द ना चीने कथनी बदनी करे बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए नानक नाम समाल तू जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा जग हो मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे भाए मल हो मैं तोती किवे ना उतरे जे सो तीर्थ नाए बहुविध कर्म कमा।

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

कर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले कर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए जाए पूछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाओ सतगुर दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड अवरना कोए हौ गुर शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हों तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन नाथी है मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लग्या कड रतन देवे प्रगास, तन वड पागी वड पागिया जो आए मिले गुरपास, जिना सतगुर पुरख ना पेट्यो से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाई है विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया।

पूर्ण दावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हौ सतगुर के बल जाओ। बिन सतगुर हर नाम न लब्बे लख कोटि कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा। हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ, जिनी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ। कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ, मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए। हौ सतगुरु विट्टों वारिया जिन हर प्रभ दिया।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोथिया तुर लिखिया ना मेटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिन सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पागहीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचै पचाए पाई रे।

सोए। पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ। गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए। ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरुमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे शोभा पाए। जिनी गुरुमुख नाम सलाया तिना सबको कहे सवा।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अफार करता चितना आवई।

अहंकार करें अहंकारिया, व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप बुलाया, ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया, इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है, क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोए, नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए। श्री राग महला पंजवा। मन बिलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया, छत्र तार बादशाहियां विच सहसे परिया, पाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख विदाते, दुख सहसा मिट गया। रहाओ जेते थांग सनंतरा तेते पव आया, तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया, हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया, सबको वसगत कर लेन बिन नावे खाक रलिया, कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया, गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया। श्री राग महला पंजवा। पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुगद अजान, सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान, सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान, प्राणी तू आया लाहा लेन लगा कित को पकड़े।

पंजवां कड़ी मौत का पाहुना काज सवारन हारे माया काम व्यापिया समझे नहीं गवार उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे हो भी पूरब लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही ने डडुरी पक्की वडन हार ले दात पहुत्या लावे कर तैयार जा होआ हुकुम किसान दा ता लुण मिणिया खेतार पहला पैर तंदे गया दूजे पर सोया तीजे चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिससे सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा।

कहत जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वै मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

जपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो तिस

मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाई सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ। दुनिया किया वडियाईयां।

उपाव स्यान सगल छड़ गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार इस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपुरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विस

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए,

काल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल, थान थान अंतर रव रया।

खाओ मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उज्जला जप नाम दान स्नान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभिमान पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ निर्वाण सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख ऊजने

पूरा सतगुरु जे मिले पाए शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सिओ मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोई रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए ने चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पे खत किल विखिरे मन तन होवे शांत एक मन एक त्याये मन की लाए भरांत गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था पिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान का

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भक्ति नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पे प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार। करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कट्टन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार। तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर। थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान। सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप। रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नगर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ। मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग। रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान। दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। पूला मार्ग पायुन

रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम।

प्रभात। क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभलोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेय रणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिनसे नाल प्यार। श्री राज महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पाओ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिंतु साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा। दुखरित सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संतो कोई कोट मंदा ही, कहन कहावन एहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरुमुख कोई विरला, गत अविगत कछ नजर ना आया।

पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवर दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुवाए सच्चे से तीरतिया दरगे बैसन जाए करते हथ वड्याइया पूरब लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहेब सच टेक सच्चो सच वखाणिए सच्चो बुद्ध विवेक सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीवे एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वसे पूरन हो वै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड पागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवन अवर न कोय गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम आगे दरगह मनी।

रहाओ। सतगुरु विटों वारिया जिन दिता सचनाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूर्व लिखिया से ही नाम से आए।

जापी केतड़ा लिख ना जाने कोए, जे सौ शायर मेली है तिल ना पुजावे रोए, कीमत किने न पाया सब सुन सुन आखें सोए। पीर पैकाम सालक साधक सौदे और शहीद, शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद, बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद। पुछन ना साजे पुछ ना टाहे, पुछ ना दे वैले, अपनी कुदरत आप

आओ जिथे वसे मेरा पासाओ सो केवड है खाओ अंबल कोए ना सकई हों किसको पुछन जाओ वरना वरन ना पावनी जे किसे वड्डा करे वड्डे हाथ वड्डे आईया जय पावे तै दे हुक्म सवारे आपने चसाना तिल करे सबको आखे बहुत बहुत लैने कै विचार केवड़ दाता आखी

पाखंड प्रेम ना पाईए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुरु माए समाए। फिर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंतन

ऊंचो जाए, सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू आपे मोल अपार, साचो मन महत तू आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यो पावे त्यों राख तू हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत, आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहे था आपे पार अपार, साची वार सुजान तू शब्द लंगावन हार, निडरया डर जानी।